पसंद किया, कब तुम्हें जाने लगा और कब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी, मुझे नहीं पता।

सप सपन सनु तुम बुतिवे भ्रमर जानव विरहद दीशिया नेनपनु नन्नली तरुतलिदे तन्नली गाली नल्लने दीशिदे तनु

मांगे, अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी, आओ दुआएं मांगे, ऐसी लगती जैसे लगी हो, डबल रोटी को टांगे, और डबल रोटी को टांगे, ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा माँ, एक सुर

पहचाने, जो ठीक है जवाब तो दे, पर मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने, सच है ना बोलती क्यों नहीं वो मैं जानू।

0: पुत्र तुझी आयकन बाई अमर जाले कात्रीन बाई तुवें म्हाका कात्रींत जाले ये कात्रिना
1: ये कात्रिना
0: आयकल तन मैम वर्त मैम तंत्र पांड्रा